इतिहास के सफ़ों पे दर्ज हैं कहानियाँ कई देशों के संघर्ष के दौर की। वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में। कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में। कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। आपला खानदेश, आपली माणसं।
1: करिअरची योग्य सुरुवात म्हणजेच उज्ज्वल भविष्याची पहाट, म्हणून आता आपल्या करिअरची योग्य सुरुवात करा केसी इज ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च च्या विविध करिअर ओरिएंटेड कोर्सेसने।
2: MBA, MCA सारखे PG कोर्सेस तसेच MCA इंटिग्रेटेड BBA, MBA, BMS, BCA सारखे UG कोर्सेस साठी प्रवेश सुरू, सोबतच 100% ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट असिस्टन्स। उत्तर महाराष्ट्रातील बेस्ट इन्स्टिट्यूट अवॉर्ड ने सन्मानित कॉलेज इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च, जिल्हा उद्योग केंद्रा मागे जळगाव।
3: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं 90.8 FM रेडियो मन भावन पर कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, जब हम किसी से कोई कीमती चीज़ उधार लेते हैं तो हमारी यह जिम्मेदारी होती है कि हम उसे संभाल कर रखें और यही और सही समय पर सम्मान के साथ वापस लौटाएं। लेकिन अगर कोई उस अमानत को छुपा लें, चुरा लें या उसका दुरुपयोग करें तो समाज और कानून की नज़र में वह अपराधी बन जाता है, उसे उसकी सजा भुगतनी ही पड़ती है। परमात्मा ने हमें यह इंसानी शरीर, यह सांसें और यह चेतना एक बहुत बड़ी अमानत के रूप में दी है। कबीर साहब आज हमें आगाह कर रहे हैं कि जो लोग इस अमानत की चोरी करते हैं, जो इस जीवन के दाता को ही भूल जाते हैं, अस्तित्व के नियम उनके साथ कैसा न्याय करते हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह गहरा और रहस्यमयी सूत्र। जिहि हरि की चोरी करी, गए राम गुण भूली, ते बिधणा बागुल रचे, रहे अरथ मुखी छूली। जिहि हरि की चोरी करी, गए राम गुण भूली,

0: नमस्ते दोस्तों, मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं करियर गाइडेंस प्रोग्राम में। मैं राजन बाजी और मेरे साथ हैं
1: मिस्टर अभय चौहान, मोटिवेशनल स्पीकर और लीडरशिप कोच।
0: वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम लोग ऐसे विषय पे चर्चा करने वाले हैं जो सारे इंटरव्यू में आपको बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले हैं। हम लोग ऐसे चार सवाल के बारे में चर्चा करेंगे आज, जो सारे लेवल के इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं।
1: बाजी सर, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये।
0: हाँ जी, दीज आर दी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी लेवल ऑफ इंटरव्यू, एनी पोजिशन इंटरव्यू, एंड दीज आर दी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस।
1: जी जी, बिल्कुल सही शब्द का आपने इस्तेमाल किया, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। हमारे दोस्त जो आज हम दोनों को आज सुन रहे हैं, उनको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। दोस्तों, जिन्होंने अगर पहली सीरीज शायद मिस की होगी, तो आज उनके लिए एक बार फिर से रिमाइंडर है। मैंने मेरे करियर में तकरीबन 7,000 से 8,000 इंटरव्यूज में ले चुका हूँ कॉर्पोरेट लाइफ में। सेम उसी तरह मेरे जो सहयोगी बैठे हैं बाजी सर,
0: सही बता रहे हैं,
1: उन्होंने भी तकरीबन 7,000 से 8,000 इंटरव्यू ले चुके हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है बहुत टची सब्जेक्ट है बाजी सर मेरे लिए भी, क्योंकि सारा खेल जो होता है इंटरव्यू पे ही होता है।
0: तो हम लोग आज क्या करते हैं सर कि हम लोग एक्चुअल रोल प्ले करते हैं।
1: जी जी जी, बहुत अच्छा।
0: एक्चुअल रोल प्ले मतलब आप एक कैंडिडेट बनेंगे और मैं आपको वही चार जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो सवाल आपको पूछूंगा।
1: चलो बस बढ़िया।
0: इस सवाल का अप्रोप्रिएट कैसे आंसर देना चाहिए, हाउ टू रिप्लाई इन अ वेरी अप्रोप्रिएट मैनर, वो हम लोग आज देखते हैं।
1: चलो, तो यानी आपका कहना है कि मॉक सेशन करेंगे और मैं यहाँ आज कैंडिडेट बैठा हूँ।
0: जी,
1: अगर
0: जी,
1: मैं
0: जी,
1: पास हो गए तो आप मुझे जॉब देने वाले हैं
0: 100%।
1: चलो बढ़िया बढ़िया, इससे अच्छी और बात कोई हो ही नहीं सकती है। आप स्टार्ट करें, मेरा इंटरव्यू लें, अब मुझे एसेस करें। उससे पहले मैं एक छोटा सा इंसिडेंट में शेयर कर लेता हूँ। मैं कॉलेज में एज ए विजिटिंग फैकल्टी जाता हूँ, गेस्ट लेक्चर भी जाता हूँ। सेशन जैसी खत्म होता है तो जो बच्चे हैं जो पीजी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, आके मुझे यही पूछे, सर ये सवाल पूछा था, इसे कैसे जवाब देना है।
0: Exactly.
1: तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है, जो बैठ के सुन रहे हैं, कागज पेन ले लीजिए, या आप रिकॉर्ड कर सकते हैं तो रिकॉर्ड कर लीजिए इसे।
0: हाँ जी, तो ये मेरे ख्याल से सभी अपने लिसनर भाइयों को ये चार सवाल के जो अप्रोप्रिएट आंसर आप देंगे, मुझे लगता है काफी हद तक सबको ये हेल्प करेंगे अपना इंटरव्यू क्रैक करने के लिए।
1: जी जी,
0: है ना।
1: जी जी बिल्कुल,
0: तो चालू करें सर।
1: या प्लीज प्लीज सर, चलो मैं तैयार हूँ इंटरव्यू देने के लिए।
0: ओके, चलो लेट्स स्टार्ट देन।
1: यस,
0: तो मिस्टर अभय, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ।
1: यस सर, आई विल डेफिनेटली टेल सर, माई नेम इज अभय चौहान, आई एम एन MBA पास आउट and I have done my specialization in sales and marketing, sir. And I have done a workshop in sales and marketing for 2 months in the XYZ company, and where I have learned a lot many things as far as sales, and I have the certificate for that workshop also, sir. This is the certificate. And prior to that, I have done my graduation in commerce. I am a commerce graduate, sir. And let me just highlight one more thing. In my schooling days, I was a distinction holder in statistics and income tax subject while doing my junior college, sir. I just wanted to highlight that. And moreover, while I was doing my MBA, I have done my summer internship in XYZ company, sir, for 2 months. And my topic was how to do sales and marketing in FMCG market. And this is the certificate. And that was my research subject. So that is what all about me, sir.
0: Fantastic, fantastic. So, Mr. Abhay, what are your strengths and weaknesses?
1: Yes, sir. I will love to express my strengths and weaknesses, sir. Let me start with my strengths, sir, first. My strength is I am a very positive attitude person. I think very positive all the time. Whether it is a personal life or my professional life, I think very positive. Second is I am very eager to learn. If anything new is there, I'm definitely very much interested in learning new things. Apart from my specialization in sales or marketing also, I learned other things in finance and other specialization in HR also in my MBA. So I'm very eager to learn. And I'm a very proactive kind of a person. I take initiative in everything. I might not have won anything in my college days or activities, but I take initiative and I participate in everything. So these are the three strengths what I can say, sir. And as far as my weaknesses are concerned, in fact, and other people should tell me what exactly my weaknesses are, but certainly I know what my weaknesses are. So the first weakness what I have is I'm a very perfectionist. Whatever I do, whether it is a personal thing or professional thing or college assignment, I wanted to do each and everything very, very perfectly. And the second weakness what I can is, sir, the way I am committed in my work. and the way I am committed in my personal life also, I expect every other person to be committed as I am. So that is my weaknesses, and I expect everybody to be as committed as.
0: Okay. So your weaknesses, like being a perfectionist or being a committed.
1: Yes, sir.
0: But these are the qualities.
1: I know, sir. But these are the qualities, but this is coming across as my weaknesses. That's what I can add up.
0: Right. Glad to know that, Abhay. My next question is, why we should hire you?
1: Okay, certainly, sir. I will definitely love to answer you that why you should be hiring me. Sir, actually, this is the job profile I'm looking for. I have the knowledge, I have the skills which matches the job profile. And if given an opportunity, definitely I will prove myself and I will be an asset to the company. That is for sure, sir. That I can tell you.
0: Okay.
1: And skills and knowledge is concerned. So these are the certifications and these are the workshops what I've done and specializations, sir. This you can see. That's why you should be hiring me, sir.
0: Okay. That's good. So, Mr. Abhay, this is my fourth and last question to you.
1: Right.
0: Where do you see yourself after 5 years?
1: Sir, as far as my individual thing is concerned, I see myself as a top performing employee of your company if you hire me.
0: Okay.
1: Of the organization, I would like to continue and upgrade my skills. And definitely by upgrading my skills and knowledge in the organization, I look up for the much more higher responsibility in the company as well, sir. If you hire me, sir.
0: That's good. Glad to know that, Mr. Abhay. Thank you very much.
1: Thank you very much, Baji sir.
0: So, दोस्तों हमने देखा अभी कि ये चार सवाल जो मैंने मिस्टर अभय को पूछे है ना. पहला सवाल था कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ. ये सवाल सारे इंटरव्यूज में आपको पूछे जाएंगे, वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल इंटरव्यू हो, आपका मिडल मैनेजमेंट लेवल हो या एंट्री लेवल का जॉब हो.
1: जी जी,
0: है ना. सेकंड सवाल, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. थर्ड जो सवाल मैंने पूछा, कुछ लोग यदि लिख रहे तो लिख लीजिए, व्हाई शुड वी हायर यू. एंड फोर्थ सवाल, Where do you see yourself after 5 years?
1: Right.
0: ये चार सवाल है जो सारे more or less सारे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं.
1: जी जी जी.
0: And I think Abhay sir has given most appropriate answer for those questions.
1: जी. हमारे दोस्त जो अभी लिसनर हैं, जो सुन रहे हैं, उनके लिए आपके लिए एक गाइडलाइंस है. जो मैंने अभी जवाब अपने दिया, जो बाजी सर ने जो क्वेश्चंस पूछे, वो एक थोड़ा सा हम उस पर ऐड करना चाहेंगे. 100% जवाब सही नहीं है, बट जैसे कहेंगे कि दीस आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कोई भी कैंडिडेट जो है दे सकता है इस सवाल का जो जवाब जो पूछा है.
0: Correct.
1: तो बाजी सर अगर आपकी इजाजत हो तो हम उसको थोड़ा सा एलेबरेट कर लें.
0: राइट. मैं अभी उसी पे आ रहा था सर.
1: जी,
0: थोड़ा
1: जी.
0: सा है ना, आपने जो आंसर दिए है
1: जी,
0: उसके पीछे आपका बोलने का मकसद क्या था और उसका बोलने के बाद उसका इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है
1: जी,
0: ये थोड़ा सा आप एलोबरेट करेंगे तो मेरे ख्याल से अपने जो लिसनर्स है उनको काफी हद तक इसका फायदा होगा.
1: जी बिल्कुल सही किया. मतलब उसके पीछे क्या रीजन है तो बताते हैं. तो हम पहला सवाल ले लेते हैं, फिर उसको हम थोड़ा सा उसको डिस्क्रिप्टिव बताएंगे कि उसके पीछे मंशा क्या होती है इंटरव्यूअर की.
0: राइट.
1: तो पहला सवाल जैसे आपने मुझे पूछा था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो मैं उसमें थोड़ा सा एलेबरेट करना चाहूंगा.
0: हाँ जी.
1: कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ जब भी पूछेंगे तो दोस्तों जो हमको सुन रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले स्टार्ट करना हो तो आपको प्रेजेंट से स्टार्ट करना होता है.
0: हाँ जी.
1: प्रेजेंट से फिर आप पास्ट में लेके जाइए.
0: हाँ जी.
1: जैसे मैंने बताया कि मैं जस्ट MBA पास आउट हूँ, फिर उसके बाद मैंने कॉमर्स का मैंने बताया, फिर उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट आपका अचीवमेंट अगर जूनियर कॉलेज या स्कूलिंग डेज में है तो ही आप स्कूलिंग या जूनियर कॉलेज तक जाइए.
0: बराबर.
1: अदरवाइज पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आपका उसके बाद नेक्स्ट जो है ग्रेजुएशन तक लेके जाइए.
0: फैंटास्टिक.
1: नेक्स्ट जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट आपकी जो जॉब रिलेटेड स्किल्स और जो नॉलेज है केवल उसको हाईलाइट कीजिए. जैसे जो हमारे लिसनर हैं उनको याद होगा मैंने बताया कि मैंने सेल्स और मार्केटिंग में ये वर्कशॉप किया है, 2 महीने का वर्कशॉप किया, उसका सर्टिफिकेशन ये है.
0: Right.
1: तीसरा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा उसमें आपकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन आप बताइए. जैसे MBA हो गया है, BCom हो गया है, फिर एडिशनल और किसी ने और कुछ कुछ भी किया होगा, MA किया, PhD किया तो कुछ है, तो उसको भी आप ऐड कीजिए कि ये मैंने क्वालिफिकेशन लिया हुआ है. और उसमें चौथा पॉइंट आ जाता है फिर आपका ट्रेनिंग स्किल्स एंड एक्सपीरियंस. अगर कहीं भी आपने काम किया हो कि जैसे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, या आपने एक्स्ट्रा आपकी स्किल है कि आप बहुत प्रोएक्टिव एक्स्ट्रोवर्ट हैं, तो आपको उस चीज को या कोई ट्रेनिंग लिए तो उसको भी आप हाईलाइट कीजिए। और नेक्स्ट चीज आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल कॉलेज में होता ही है, समर इंटर्नशिप। तो समर इंटर्नशिप आप जो भी करते हैं, एक महीना दो महीने का जो भी करते हैं, उसके बारे में बताइए। जैसे आप दोस्तों ने सुना होगा कि मैंने बताया कि ये समर इंटर्नशिप में मैंने ये एक्स वाई जेड कंपनी में किया, उस दो महीने में मैंने मेरा टॉपिक ये था और मैंने ये सीखा। और लास्ट और आखिरी बात पर सबसे इंपॉर्टेंट बात बाजी सर,
0: हाँ जी,
1: कभी भी आप अपनी लाइफ हिस्ट्री मत बताइए। लाइफ हिस्ट्री का मतलब कि मेरे फादर ये करते हैं, मेरी मदर ये करती है, हमने तीन भाई बहन है, ये जब तक इंटरव्यूअर आपको पूछे ना, आप उसका जिक्र नहीं करेंगे।
0: मतलब उन्होंने पूछने के बाद ही हमने बताना
1: चाहिए। जी जी, लाइफ हिस्ट्री आपको अगर इंटरव्यूअर पूछ रहा है तो ही आप बताइए, अदरवाइज उसका जिक्र करने का, उसकी बात करने की कोई जरूरत नहीं है।
0: एक थोड़ा सा प्रिकॉशनरी एक और मैं भी पॉइंट्स बता देता हूँ सर इसमें।
1: जी जी,
0: व्हेन इंटरव्यूअर आस्क टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट दे स्टार्ट प्रेजिंग देमसेल्फ।
1: राइट, सही,
0: खुद की तारीफ करना थोड़ा सा जो है ना फनी लगता है।
1: जी जी,
0: क्योंकि तारीफ जो है अपनी किसी और ने करनी चाहिए,
1: सही,
0: तो वो अच्छी लगती है।
1: जी जी जी,
0: तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, है ना, फ्यू पीपल्स हु लाइक टू प्रेज देमसेल्फ्स, दे स्टार्ट प्रेजिंग देमसेल्फ्स,
1: करेक्ट,
0: तो वो थोड़ा सा फनी हो जाता है।
1: जी जी जी,
0: मैं एक एग्जाम्पल आपको बता दूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस।
1: अच्छा अच्छा,
0: एक मैनेजर मेरे पास आया था इंटरव्यू के लिए।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: तो जैसे मैंने बताया वैसे उसने अपना खुद का तारीफ करना चालू कर दिया।
1: किया
0: सर, आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम वेरी हैंडसम, ये वो तो वो मुझे थोड़ा फनी लगा, बट डाउन द लाइन ही गॉट सेलेक्टेड। वो 3 साल मेरे साथ काम करता रहा,
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: 3 साल तक मेरे दिमाग में वो था।
1: अच्छा, तो बैठा हुआ था वो।
0: बैठा हुआ था, जब भी वो कुछ गलती करे तो मैं बोलता था, तू तो इंटरव्यू में मुझे बोला था
1: जी,
0: यू आर वेरी स्मार्ट, वेरी हैंडसम, वेरी ये। ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, खुद की तारीफ ऐसी करो कि वो सामने वाले को स्ट्राइक ना हो।
1: जी जी, सही बात, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही पॉइंट आपने बताया बाजी सर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपने मुझसे पूछा था व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, यस यस, पहला पॉइंट उसमें एक ही आता है दोस्तों, कभी भी ज्यादा से ज्यादा 2 स्ट्रेंथ और 2 वीकनेस बताइए।
0: करेक्ट,
1: है ना। अगर आपको बहुत ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंट हैं तो फिर आप 3 स्ट्रेंथ या 3 वीकनेसेस बताइए। फिर भी आपसे एक प्रिकॉशनरी एक रहेगा कि 2 स्ट्रेंथ बताइए और 2 वीकनेसेस बताइए।
0: करेक्ट।
1: और स्ट्रेंथ में मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूँ। अब स्ट्रेंथ में है कि जैसे आपने भी सुना होगा, मेरा भी बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मेरा ये स्ट्रेंथ है, मैं बहुत जबरदस्त हूँ, ये जैसे स्वयं की एक्स्ट्राऑर्डिनरी तारीफ जो है वो अननेसेसरीली आप उसको अवॉइड कीजिए। जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड है, ईगर टू लर्न। और आप जो दोस्तों हमको सुन रहे हैं उसका इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अगर उस चीज को बोल रहे हैं तो उसको बैक करने के लिए आपको और थोड़ा सा कुछ ऐड करना पड़ेगा।
0: करेक्ट।
1: एक छोटी सी स्टोरी, जैसे मैंने कहा पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो मैंने कहा कि भाई मैं हार मानता नहीं हूँ किसी भी चीज, थोड़ा सा उसको स्टोरी ऐड करना पड़ेगा।
0: बहुत बार इंटरव्यूअर पूछ लेता है भाई, टेल सम एग्जांपल हाउ योर एटीट्यूड इज पॉजिटिव।
1: जी, आपने भी पूछा ही होगा बहुत बार कैंडिडेट्स को।
0: करेक्ट है
1: जी। अब नेक्स्ट चीज पे आता हूँ, वीकनेस। अभी वीकनेस में देखिए, एज ए ह्यूमन हर इंसान में वीकनेस होती है, पर अभी टू बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट होके सब बता देंगे, मेरा टेम्पर आउट हो जाता है बहुत जल्दी और मैं बिल्कुल अकेले काम करना पसंद करता हूँ, ये सब आप बोलेंगे तो जिंदगी में ना हमने कभी सेलेक्ट किया ना इंटरव्यूअर आपको सेलेक्ट करेगा। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे हमने उसको क्या है कि बीच वाला बताया कि आई एम ए परफेक्शनिस्ट, जिसको आपकी
0: जो थोड़े स्ट्रेंथ की तरफ झुकते हैं।
1: हाँ, स्ट्रेंथ की तरफ, बिल्कुल सही। तो जो थोड़े स्ट्रेंथ की तरफ झुकते हैं उसी वीकनेस को आप जिक्र कीजिए, बताइए आप।
0: राइट, इसमें मैं एक ही चीज ऐड करूंगा सर।
1: यस प्लीज।
0: स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऐसे ही बताइए जो एप्रोप्रिएट हो जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो।
1: Exactly.
0: या फिर जो इंडस्ट्री के लिए अप्लाई
1: Exactly.
0: कर रहे हो।
1: Exactly.
0: जैसे नॉर्मल आपका कोई जॉब है और उसके लिए आप बता रहे हो कि आई हैव अ स्ट्रांग मसल, ये वो।
1: Yes,
0: तो मे बी दैट इज द स्ट्रेंथ, बट देन इट इज नॉट एप्रोप्रिएट और यू नो सुटेबल टू द पोजिशन विच यू आर अप्लाइंग, तो उसका कोई रिलेवेंस नहीं है वहां पे।
1: एकदम सही कहा,
0: ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए।
1: सही सही कहा आपने। जी जी।
0: तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, तो इसके बारे में बताइए अभी, थर्ड क्वेश्चन के बारे में, व्हाई वी शुड हायर यू। तो इसमें आपने जो आंसर दिया वो मेरे हिसाब से तो अप्रोप्रिएट था
1: जी,
0: बट थोड़ा सा इसको एलाबरेट
1: करें जी। व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाई वी शुड हायर यू, मोर और लेस आप अगर फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस है, ये सवाल आने ही वाला है।
0: राइट,
1: है ना। एक ही चीज आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो केवल जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड है,
0: हाँ जी,
1: उसी चीज को आप हाईलाइट करेंगे। कहने का मतलब, इन शॉर्ट, जॉब प्रोफाइल के साथ आप अपनी स्किल को मैच करेंगे। सिंपल इसमें यही बताना है कि ये जॉब प्रोफाइल है एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड स्किल मेरे पास है, ये मैच होता है, इसलिए आप मुझे हायर कीजिए और मैं कीन लर्नर हूँ और ऑर्गेनाइजेशन के साथ रह के मैं करियर बनाऊंगा।
0: सही बता रहे हैं आप।
1: तो यही चीज एक की पॉइंट है जो कोई भी इंटरव्यूअर या आप और हम, मैं भी कभी भी इंटरव्यू लिए तो हम यही सुनना चाहते हैं।
0: सही बात बता रहे जी। तो ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बताइए सर, वेयर डू यू सी योरसेल्फ, एक मैंने सवाल पूछा था आपको
1: जी जी,
0: उसका भी आपने एप्रोप्रिएट आंसर दिया मेरे हिसाब से
1: जी जी।
0: तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: देखिए, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स, इस सवाल के पीछे ऑब्जेक्टिव, मंशा, सोच इंटरव्यूअर की दो रहती है।
0: right.
1: पहला, ये कैंडिडेट कितने साल हमारे कंपनी के साथ रहेगा।
0: राइट right, right.
1: दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, कैंडिडेट एम्बिशियस है कि नहीं।
0: राइट right, right.
1: ये दो ही चीज होता है इंटरव्यूअर के दिमाग में, इसलिए सवाल पूछता है
0: right.
1: कि भाई आपका एम्बिशन और गोल आपने सेट किया है क्या।
0: राइट right,
1: right. है ना, कि भाई 5 साल आप बोलेंगे सर मैं अच्छा से काम करूंगा, बहुत अच्छे से रहूंगा, इधर ही रहूंगा मैं, घुसना नहीं। वो ये देखना चाहता है मैं एम्बिशियस हूं कि नहीं हूं, 5 साल में मैं ग्रो करूंगा कि नहीं, और कंपनी के साथ ये 4 से 5 साल रहने वाला है कि नहीं कैंडिडेट, ये ही ऑब्जेक्टिव है।
0: करेक्ट करेक्ट सर, मैं जब भी ये सवाल पूछता हूँ किसी कैंडिडेट को तो मेरा ऑब्जेक्टिव भी आपने जैसे बताया वही रहता है
1: जी।
0: मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कैंडिडेट कुछ सोच के आया है यहाँ पे या नहीं
1: जी,
0: है।
1: जी जी,
0: इसका इंटरेस्ट लेवल कितना है इस प्रोफाइल में,
1: exactly.
0: या फिर इस फील्ड में
1: एग्जैक्टली
0: exactly. वो मुझे इस उसके आंसर से, इस सवाल के आंसर से मुझे पता चचलता है।
1: एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
0: तो थोड़ा सा फोर्सी करने वाला, फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोचने वाला कैंडिडेट, इट इज ऑलवेज वेरी यू नो ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट यू नो बीइंग विद द कंपनी फॉर द कपल ऑफ इयर्स।
1: जी जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने बाजी सर। तो दोस्तों, फ्रीक्वेंटली आज 4 सवाल होते हैं, उसको हमने थोड़ा सा टच करने की कोशिश की और हमारा जो एक्सपीरियंस है भी उसमें शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि जो सुन रहे हैं हमारे दोस्त, हमको जो रेडियो पे सुन रहे हैं, उनको काफी इसमें मदद मिली होगी। ये 4 सवाल आपको कभी ना कभी आने ही वाला है।
0: राइट राइट राइट। और मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि अभी जितने भी अपने लिसनर है, ये 4 सवाल का वो पहले तैयारी करेंगे और अपना इंटरव्यू बहुत अच्छी तरीके से दे पाएंगे।
1: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं थोड़ा उससे थोड़ा एक स्टेप आगे जाके ही कहूंगा, अगर ये 4 साल की तैयारी या आप उसे रट भी लें या अच्छे से मगअप भी कर लें, तैयारी कर लें, अच्छे से जवाब दें, तो सर्टनली आपके चांसेस जो है बहुत बढ़ जाते हैं।
0: ये 4 सवाल तो मतलब इंटीग्रल पार्ट है
1: जी,
0: हमने तैयारी करनी ही चाहिए और अच्छी तैयारी करके जाइए, मुझे लगता है ये बहुत हेल्प होगी आपको।
1: राइट राइट। तो आज के लिए अभय चौहान, मोटिवेशनल स्पीकर और

इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: नमस्ते दोस्तों, मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं करियर गाइडेंस प्रोग्राम में। मैं राजन बाजी और मेरे साथ हैं
1: मिस्टर अभय चौहान, मोटिवेशनल स्पीकर और लीडरशिप कोच।
0: वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम लोग ऐसे विषय पे चर्चा करने वाले हैं जो सारे इंटरव्यू में आपको बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले हैं। हम लोग ऐसे चार सवाल के बारे में चर्चा करेंगे आज, जो सारे लेवल के इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं।
1: बाजी सर, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये।
0: हाँ जी, दीज आर दी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी लेवल ऑफ इंटरव्यू, एनी पोजिशन इंटरव्यू, एंड दीज आर दी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस।
1: जी जी, बिल्कुल सही शब्द का आपने इस्तेमाल किया, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। हमारे दोस्त जो आज हम दोनों को आज सुन रहे हैं, उनको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। दोस्तों, जिन्होंने अगर पहली सीरीज शायद मिस की होगी, तो आज उनके लिए एक बार फिर से रिमाइंडर है। मैंने मेरे करियर में तकरीबन 7,000 से 8,000 इंटरव्यूज में ले चुका हूँ कॉर्पोरेट लाइफ में। सेम उसी तरह मेरे जो सहयोगी बैठे हैं बाजी सर,
0: सही बता रहे हैं,
1: उन्होंने भी तकरीबन 7,000 से 8,000 इंटरव्यू ले चुके हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है बहुत टची सब्जेक्ट है बाजी सर मेरे लिए भी, क्योंकि सारा खेल जो होता है इंटरव्यू पे ही होता है।
0: तो हम लोग आज क्या करते हैं सर कि हम लोग एक्चुअल रोल प्ले करते हैं।
1: जी जी जी, बहुत अच्छा।
0: एक्चुअल रोल प्ले मतलब आप एक कैंडिडेट बनेंगे और मैं आपको वही चार जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो सवाल आपको पूछूंगा।
1: चलो बस बढ़िया।
0: इस सवाल का अप्रोप्रिएट कैसे आंसर देना चाहिए, हाउ टू रिप्लाई इन अ वेरी अप्रोप्रिएट मैनर, वो हम लोग आज देखते हैं।
1: चलो, तो यानी आपका कहना है कि मॉक सेशन करेंगे और मैं यहाँ आज कैंडिडेट बैठा हूँ।
0: जी, जी,
1: अगर
0: जी,
1: मैं पास हो गया तो आप मुझे जॉब देने वाले हैं
0: 100%।
1: चलो बढ़िया बढ़िया, इससे अच्छी और बात कोई हो ही नहीं सकती है। आप स्टार्ट करें, मेरा इंटरव्यू लें, अब मुझे एसेस करें। उससे पहले मैं एक छोटा सा मैं इंसिडेंट में शेयर कर लेता हूँ। मैं कॉलेज में एज ए विजिटिंग फैकल्टी जाता हूँ, गेस्ट लेक्चर भी जाता हूँ। सेशन जैसी खत्म होता है तो जो बच्चे हैं जो पीजी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, आके मुझे यही पूछे, सर ये सवाल पूछा था, इसे कैसे जवाब देना है।
0: एग्जैक्टली।
1: तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है, जो बैठ के सुन रहे हैं, कागज पेन ले लीजिए, या आप रिकॉर्ड कर सकते हैं तो रिकॉर्ड कर लीजिए इसे।
0: हाँ जी, तो ये मेरे ख्याल से सभी अपने लिसनर भाइयों को ये चार सवाल के जो अप्रोप्रिएट आंसर आप देंगे, मुझे लगता है काफी हद तक सबको ये हेल्प करेंगे अपना इंटरव्यू क्रैक करने के लिए।
1: जी जी,
0: है ना।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो चालू करें सर।
1: या प्लीज प्लीज सर, चलो मैं तैयार हूँ इंटरव्यू देने के लिए।
0: ओके, चलो लेट्स स्टार्ट देन।
1: यस।
0: तो मिस्टर अभय, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ।
1: यस सर, आई विल डेफिनेटली टेल सर, माय नेम इज अभय चौहान, आई एम एन एमबीए पास आउट and I have done my specialization in sales and marketing, sir. And I have done a workshop in sales and marketing for 2 months in the XYZ company, and where I have learned a lot many things as far as sales, and I have the certificate for that workshop also, sir. This is the certificate. And prior to that, I have done my graduation in commerce. I am a commerce graduate, sir. And let me just highlight one more thing. In my schooling days, I was a distinction holder in statistics and income tax subject while doing my junior college, sir. I just wanted to highlight that. And moreover, while I was doing my MBA, I have done my summer internship in XYZ company, sir, for 2 months, and my topic was how to do sales and marketing in FMCG market, and this is the certificate. Fantastic. And that was my research subject, so that is what all about me, sir.
0: Fantastic. So Mr. Abhay, what are your strengths and weaknesses?
1: Yes sir, I will love to express my strengths and weaknesses, sir. Let me start with my strength, sir. First, my strength is I'm a very positive attitude person. I think very positive all the time, whether it is a personal life or my professional life, I think very positive. Second is I'm very eager to learn. If anything new is there, I'm definitely very much interested in learning new things. Apart from my specialization in sales or marketing also, I learned other things in finance and other specialization in HR also in my MBA. So I'm very eager to learn, and I'm a very proactive kind of a person. I take initiative in everything. I might not have won anything in my college days or activities, but I take initiative and I participate in everything. So these are the three strengths what I can say, sir. And as far as my weaknesses are concerned, in fact, and other people should tell me what exactly my weaknesses are, but certainly I know what my weaknesses are. So the first weakness what I have is I'm a very perfectionist. Whatever I do, whether it is a personal thing or professional thing or college assignment, I want to do each and everything very, very perfectly. And the second weakness what I can is, sir, the way I am committed in my work. and the way I am committed in my personal life also, I expect every other person to be committed as I am. So that is my weaknesses, and I expect everybody to be as committed as.
0: Okay. So your weaknesses, like being a perfectionist or being a committed.
1: Yes, sir.
0: But these are the qualities.
1: I know, sir. But these are the qualities, but this is coming across as my weaknesses. That's what I can add up.
0: Right. Glad to know that, Abhay. My next question is, why we should hire you?
1: Okay, certainly, sir. I will definitely love to answer you that why you should be hiring me. Sir, actually, this is the job profile I'm looking for. I have the knowledge, I have the skills which matches the job profile. And if given an opportunity, definitely I will prove myself and I will be an asset to the company. That is for sure, sir. That I can tell you.
0: Okay.
1: And skills and knowledge is concerned. So these are the certifications and these are the workshops what I've done and specializations, sir. This you can see.

0: skills and knowledge in the organization, I look up for the much more higher responsibility in the company as well, sir, if you hire me, sir.
1: That's good. That's good. Glad to know that, Mr. Abhay. Thank you very much.
0: Thank you. Thank you very much, Baji sir.
1: So, दोस्तों हमने देखा अभी कि ये चार सवाल जो मैंने मिस्टर अभय को पूछे है ना, पहला सवाल था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये सवाल सारे इंटरव्यूज में आपको पूछे जाएंगे, वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल इंटरव्यू हो, आपका मिडल मैनेजमेंट लेवल हो या एंट्री लेवल का जॉब हो.
0: जी जी,
1: है ना. सेकंड सवाल, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. थर्ड जो सवाल मैंने पूछा, कुछ लोग यदि लिख रहे तो लिख लीजिए, व्हाई शुड वी हायर यू. एंड फोर्थ सवाल, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years.
0: राइट,
1: ये चार सवाल है जो सारे मोर ऑर लेस सारे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं.
0: जी जी जी.
1: एंड आई थिंक अभय सर हैज गिवन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दोस क्वेश्चंस.
0: जी, हमारे दोस्त जो अभी लिसनर हैं, जो सुन रहे हैं, उनके लिए आपके लिए एक गाइडलाइंस है. जो मैंने अभी जवाब आपने दिया, जो बाजी सर ने जो क्वेश्चंस पूछे, वो एक थोड़ा सा हम उस पर ऐड करना चाहेंगे. 100% जवाब सही नहीं है, बट जैसे कहेंगे कि दीस आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कोई भी कैंडिडेट जो है दे सकता है इस सवाल का जो जवाब जो पूछा है.
1: Correct.
0: तो बाजी सर अगर आपकी इजाजत हो तो हम उसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर लें.
1: राइट राइट, मैं अभी उसी पे आ रहा था सर.
0: जी,
1: थोड़ा
0: जी.
1: सा है ना, आपने जो आंसर दिए है
0: जी,
1: उसके पीछे आपका बोलने का मकसद क्या था और उसका बोलने के बाद उसका इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है,
0: जी,
1: ये थोड़ा सा आप एलैबोरेट करेंगे तो मेरे ख्याल से अपने जो लिसनर्स है उनको काफी हद तक इसका फायदा होगा.
0: जी जी, बिल्कुल सही किया. मतलब उसके पीछे क्या रीजन है तो बताते हैं. तो हम पहला सवाल ले लेते हैं, फिर उसको हम थोड़ा सा उसको डिस्क्रिप्टिव बताएंगे कि उसके पीछे मंशा क्या होती है इंटरव्यूअर की.
1: राइट राइट.
0: तो पहला सवाल जैसे आपने मुझे पूछा था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो मैं उसमें थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूंगा.
1: हाँ जी.
0: कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ जब भी पूछेंगे तो दोस्तों जो हमको सुन रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले स्टार्ट करना हो तो आपको प्रेजेंट से स्टार्ट करना होता है.
1: हाँ जी.
0: प्रेजेंट से फिर आप पास्ट में लेके जाइए.
1: हाँ जी.
0: जैसे मैंने बताया कि मैं जस्ट एमबीए पास आउट हूँ, फिर उसके बाद मैंने कॉमर्स का मैंने बताया, फिर उसके बाद अगर कोई इम्पोर्टेंट आपका अचीवमेंट अगर जूनियर कॉलेज या स्कूलिंग डेज में है तो ही आप स्कूलिंग या जूनियर कॉलेज तक जाइए.
1: बराबर.
0: अदरवाइज पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आपका उसके बाद नेक्स्ट जो है ग्रेजुएशन तक लेके जाइए.
1: फैंटास्टिक.
0: नेक्स्ट जो उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट आपकी जो जॉब रिलेटेड स्किल्स और जो नॉलेज है केवल उसको हाईलाइट कीजिए. जैसे जो हमारे लिसनर हैं उनको याद होगा मैंने बताया कि मैंने सेल्स और मार्केटिंग में ये वर्कशॉप किया है, 2 महीने का वर्कशॉप किया, उसका सर्टिफिकेशन ये है.
1: राइट राइट.
0: तीसरा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा उसमें आपकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन आप बताइए. जैसे एमबीए हो गया है, बीकॉम हो गया है, फिर एडिशनल और किसी ने और कुछ कुछ भी किया होगा, डबल एमए किया, पीएचडी किया, तो कुछ है तो उसको भी आप ऐड कीजिए कि ये मैंने क्वालिफिकेशन लिया हुआ है.
1: Right.
0: और उसमें चौथा पॉइंट आ जाता है फिर आपका ट्रेनिंग स्किल्स एंड एक्सपीरियंस. अगर कहीं भी आपने काम किया हो कि जैसे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, या आपने एक्स्ट्रा आपकी स्किल है कि आप बहुत प्रोएक्टिव एक्स्ट्रोवर्ट हैं, तो आपको उस चीज को या कोई ट्रेनिंग लिए तो उसको भी आप हाईलाइट कीजिए. और नेक्स्ट चीज आता सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल कॉलेज में होता ही है, समर इंटर्नशिप. तो समर इंटर्नशिप आप जो भी करते हैं, 1 महीना, 2 महीने का जो भी करते हैं, उसके बारे में बताइए. जैसे आप दोस्तों ने सुना होगा कि मैंने बताया कि ये समर इंटर्नशिप में मैंने यही एक XYZ कंपनी में किया, उस 2 महीने में मैंने मेरा टॉपिक ये था और मैंने ये सीखा. और लास्ट और आखिरी बात पर सबसे इंपॉर्टेंट बात बाजी सर.
1: हाँ जी.
0: कभी भी आप अपनी लाइफ हिस्ट्री मत बताइए. लाइफ हिस्ट्री का मतलब कि मेरे फादर ये करते हैं, मेरी मदर ये करती है, हमने 3 भाई बहन है, ये जब तक इंटरव्यूअर आपको पूछे ना आप उसका जिक्र नहीं करेंगे.
1: मतलब उन्होंने पूछने के बाद ही हमने बताना चाहिए.
0: जी जी. लाइफ हिस्ट्री आपको अगर इंटरव्यूअर पूछ रहा है तो ही आप बताइए, अदरवाइज उसका जिक्र करने का उसकी बात करने की कोई जरूरत नहीं है.
1: एक थोड़ा सा प्रिकॉशनरी एक और मैं भी पॉइंट्स बता देता हूँ सर इसमें.
0: जी जी.
1: व्हेन इंटरव्यूअर आस्क टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट दे स्टार्ट प्रेजिंग देमसेल्फ.
0: राइट राइट राइट.
1: खुद की तारीफ करना थोड़ा सा जो है ना फनी लगता है.
0: जी जी.
1: क्योंकि तारीफ जो है अपनी किसी और ने करनी चाहिए.
0: सही.
1: तो वो अच्छी लगती है.
0: जी जी जी.
1: तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये.
0: जी.
1: है ना, फ्यू पीपल्स हु लाइक टू प्रेज देमसेल्फ्स, दे स्टार्ट प्रेजिंग देमसेल्फ्स.
0: करेक्ट.
1: तो वो थोड़ा सा फनी हो जाता है.
0: जी जी जी.
1: मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस.
0: अच्छा अच्छा.
1: एक मैनेजर मेरे पास आया था इंटरव्यू के लिए.
0: हाँ हाँ हाँ.
1: तो जैसे मैंने बताया वैसे उसने अपना खुद का तारीफ करना चालू कर दिया. सर आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम वेरी हैंडसम, ये वो. तो वो मुझे थोड़ा फनी लगा, बट डाउन द लाइन ही गॉट सेलेक्टेड.
0: हाँ.

0: वो 3 साल मेरे साथ काम करता रहा
1: जी,
0: तो
1: जी.
0: 3 साल तक मेरे दिमाग में वो था.
1: अच्छा,
0: तो
1: बैठा जब भी हुआ था वो.
0: बैठा हुआ था. जब भी वो कुछ गलती करे तो मैं बोलता था, तू तो इंटरव्यू में मुझे बोला था
1: जी, जी.
0: कि यू आर वेरी स्मार्ट, वेरी हैंडसम, वेरी ये. ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए.
1: तो
0: खुद की तारीफ ऐसी करो कि वो सामने वाले को स्ट्राइक ना हो.
1: जी जी, सही बात, सही कह रहे हैं. बिल्कुल सही पॉइंट आपने बताया बाजी सर. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपने मुझसे पूछा था, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. यस यस, पहला पॉइंट उसमें एक ही आता है दोस्तों, कभी भी ज्यादा से ज्यादा 2 स्ट्रेंथ और 2 वीकनेस बताइए.
0: करेक्ट
1: है ना. अगर आपको बहुत ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंट हैं तो फिर आप 3 स्ट्रेंथ या 3 वीकनेसेस बताइए. फिर भी आपसे एक प्रिकॉशनरी एक रहेगा कि 2 स्ट्रेंथ बताइए और 2 वीकनेसेस बताइए.
0: करेक्ट.
1: और स्ट्रेंथ में मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूँ. अब स्ट्रेंथ में है कि जैसे आपने भी सुना होगा, मेरा भी बहुत एक्सपीरियंस है.
0: Right.
1: मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मेरा ये स्ट्रेंथ है, मैं बहुत जबरदस्त हूँ, ये जैसे स्वयं की एक्स्ट्राऑर्डिनरी तारीफ जो है वो अननेसेसरीली आप उसको अवॉइड कीजिए. जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड है, ईगर टू लर्न. और आप जो दोस्तों हमको सुन रहे हैं, उसका इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप अगर उस चीज को बोल रहे हैं तो उसको बैक करने के लिए आपको और थोड़ा सा कुछ ऐड करना पड़ेगा.
0: करेक्ट.
1: एक छोटी सी स्टोरी, जैसे मैंने कहा पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो मैंने कहा कि भाई मैं हार मानता नहीं हूँ किसी भी चीज, थोड़ा सा उसको स्टोरी ऐड करना पड़ेगा.
0: बहुत बार इंटरव्यूअर पूछ लेता है, भाई टेल सम एग्जांपल हाउ योर एटीट्यूड इज पॉजिटिव.
1: जी, आपने भी पूछा ही होगा बहुत बार कैंडिडेट्स को.
0: करेक्ट है
1: जी. अब नेक्स्ट चीज पे आता हूँ, वीकनेस. अभी वीकनेस में देखिए, एज ए ह्यूमन हर इंसान में वीकनेस होती है. पर अभी टू बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट होके सब बता देंगे, मेरा टेम्पर आउट हो जाता है बहुत जल्दी और मैं बिल्कुल अकेले काम करना पसंद करता हूँ, ये सब आप बोलेंगे तो जिंदगी में ना हमने कभी सेलेक्ट किया ना इंटरव्यूअर आपको सेलेक्ट करेगा. तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे हमने उसको क्या है कि बीच वाला बताया कि आई एम ए परफेक्शनिस्ट, जिसको आपकी
0: जो थोड़े स्ट्रेंथ की तरफ झुकते हैं.
1: हाँ, स्ट्रेंथ की तरफ, बिल्कुल सही. तो जो थोड़े स्ट्रेंथ की तरफ झुकते हैं उसी वीकनेस को आप जिक्र कीजिए, बताइए आप.
0: राइट. इसमें मैं एक ही चीज ऐड करूंगा सर.
1: यस प्लीज.
0: स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऐसे ही बताइए जो एप्रोप्रिएट हो जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो.
1: Exactly.
0: या फिर जो इंडस्ट्री के लिए अप्लाई.
1: Exactly.
0: कर रहे हो.
1: Exactly.
0: जैसे नॉर्मल आपका कोई जॉब है और उसके लिए आप बता रहे हो कि आई हैव स्ट्रांग मसल, ये वो.
1: Yes,
0: तो मे बी दैट इज द स्ट्रेंथ, बट देन इट इज नॉट एप्रोप्रिएट और यू नो सुटेबल टू द पोजीशन विच यू आर अप्लाइंग. तो उसका कोई रिलेवेंस नहीं है वहां पे.
1: एकदम सही कहा.
0: ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए.
1: सही सही कहा आपने. जी जी.
0: तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर. तो इसके बारे में बताइए, अभी थर्ड क्वेश्चन के बारे में, व्हाई वी शुड हायर यू. तो इसमें आपने जो आंसर दिया वो मेरे हिसाब से तो एप्रोप्रिएट था
1: जी,
0: बट थोड़ा सा इसको
1: एलाबरेट करें जी. व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाई वी शुड हायर यू. मोर और लेस आप अगर फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस है, ये सवाल आने ही वाला है.
0: राइट right,
1: है ना. एक ही चीज आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो केवल जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड है,
0: हाँ जी,
1: उसी चीज को आप हाईलाइट करेंगे. कहने का मतलब, इन शॉर्ट, जॉब प्रोफाइल के साथ आप अपनी स्किल को मैच करेंगे. सिंपल इसमें यही बताना है कि ये जॉब प्रोफाइल है एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड स्किल मेरे पास है, ये मैच होता है, इसलिए आप मुझे हायर कीजिए और मैं कीन लर्नर हूं और ऑर्गेनाइजेशन के साथ रह के मैं करियर बनाऊंगा.
0: सही बता रहे हैं आप.
1: तो यही चीज एक की पॉइंट है जो कोई भी इंटरव्यूअर या आप और हम, मैं भी कभी भी इंटरव्यू लिए तो हम यही सुनना चाहते हैं.
0: सही बात बता रहे. तो ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन है ना. तो फोर्थ क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बताइए सर. वेयर डू यू सी योरसेल्फ, एक मैंने सवाल पूछा था आपको.
1: जी जी.
0: उसका भी आपने एप्रोप्रिएट आंसर दिया मेरे हिसाब से.
1: जी जी.
0: तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए.
1: देखिए, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स, इस सवाल के पीछे ऑब्जेक्टिव, मंशा, सोच इंटरव्यूअर की 2 रहती है.
0: Right.
1: पहला, ये कैंडिडेट कितने साल हमारे कंपनी के साथ रहेगा.
0: राइट राइट.
1: दूसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, कैंडिडेट एम्बिशियस है कि नहीं.
0: राइट राइट.
1: ये 2 ही चीज होता है इंटरव्यूअर के दिमाग में, इसलिए सवाल पूछता है.
0: Right.
1: कि भाई आपका एम्बिशन और गोल आपने सेट किया है क्या.
0: राइट right.
1: है ना. कि भाई 5 साल आप बोलेंगे सर मैं अच्छा से काम करूंगा, बहुत अच्छे से रहूंगा, इधर ही रहूंगा मैं, घुसना नहीं. वो ये देखना चाहता है, मैं एम्बिशियस हूं कि नहीं हूं, 5 साल में मैं ग्रो करूंगा कि नहीं, और कंपनी के साथ ये 4 से 5 साल रहने वाला है कि नहीं कैंडिडेट, ये ही ऑब्जेक्टिव है.
0: करेक्ट करेक्ट. सर, मैं जब भी ये सवाल पूछता हूँ किसी कैंडिडेट को, तो मेरा ऑब्जेक्टिव भी आपने जैसे बताया वही रहता है.
1: जी.
0: मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कैंडिडेट कुछ सोच के आया है यहाँ पे या नहीं.
1: जी जी जी.
0: इसका इंटरेस्ट लेवल कितना है इस प्रोफाइल में.
1: Exactly.
0: या फिर इस फील्ड में.
1: एग्जैक्टली.
0: वो मुझे इस उसके आंसर से, इस सवाल के आंसर से मुझे पता चलता है.
1: एग्जैक्टली.
0: तो थोड़ा सा फोर्सी करने वाला, फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोचने वाला कैंडिडेट, इट इज ऑलवेज वेरी यू नो ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट यू नो बीइंग विद द कंपनी फॉर द कपल ऑफ इयर्स.
1: जी. बिल्कुल सही कहा आपने बाजी सर. तो दोस्तों फ्रीक्वेंटली आज चार सवाल होते हैं, उसको हमने थोड़ा सा टच करने की कोशिश की और हमारा जो एक्सपीरियंस है भी उसमें शेयर किया. मुझे उम्मीद है कि जो सुन रहे हैं हमारे दोस्त, हमको जो रेडियो पे सुन रहे हैं, उनको काफी इसमें मदद मिली होगी. ये चार सवाल आपको कभी ना कभी आने ही वाला है.
0: राइट. और मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि अभी जितने भी अपने लिसनर है, ये चार सवाल का वो पहले तैयारी करेंगे और अपना इंटरव्यू बहुत अच्छी तरीके से दे पाएंगे.
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने. और मैं थोड़ा उससे थोड़ा एक स्टेप आगे जाके कहूंगा, अगर एक चार साल की तैयारी या आप उसे रट भी लें या अच्छे से मगअप भी कर लें, तैयारी कर लें, अच्छे से जवाब दें, तो सर्टनली आपके चांसेस जो है बहुत बढ़ जाते हैं.
0: ये चार सवाल तो मतलब इंटीग्रल पार्ट है
1: जी.
0: हमने तैयारी करनी ही चाहिए और अच्छी तैयारी करके जाइए. मुझे लगता है ये बहुत हेल्प होगी आपको.
1: राइट. तो आज के लिए अभय चौहान मोटिवेशनल स्पीकर और लीडरशिप कोच की तरफ से इतना ही.
0: थैंक यू वेरी मच. मैं राजन बाजी आपसे विदा लेता हूँ.
1: थैंक यू.

0: 아즈들은 키워.
1: अरे भाई नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? अरे आप हंसी तरंग सुनिए।
2: अच्छा तू मला एकच सांगतो, स्वर अनंत केंद्रावर ऐकत जा हास्य तरंग।
3: मी काय म्हणतो, हास्य तरंग स्वर अनंत केंद्रावर हास्य तरंग।

0: श्रोते हो, हसी का हंगामा, कहकहों का खजाना, जलापन मन तो म्हणजे हास्य तरंग।
1: एक था गरीब सब्जी वाला आणि एक थी परी महिलों की सब्जी वाला। महिलों की परी नवंबर की ठंडी में जब वो गई मंडी में, सब्जी वाले का उड़ गया होश, नरम नरम लाइफ में गरम गरम जो।
0: कार्यक्रमात आम्ही आपल्या सर्वांचं स्वागत करत आहोत।